0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण चंगियां निहारियां खवाइया चंगा घ्यो आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसिया निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लै आओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके लै आवो
0: सोने दे सोहने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके लै आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहनी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुरतीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के, इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ कर नानिद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव के सगे है के जवे, उकसे उपर चढ़बे तवे।
0: ये जेडे घोड़े दे गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर चढ़न लगे,
1: उछलियो घोड़ा बल को भरियो, ने आसन पर श्री प्रभु थिरियो।
0: घोड़ा उछल गया उस वक्त, छाल मार गया। तां उस वक्त सतगुरु महाराज फिर घोड़े उते असवार नहीं होए।
1: अवनी पर तिस्ते थिर खरे, दाहन पुजा झटक बो करे।
0: महाराज वापस उतरिया, एकदम धरती ते खड़े हो गए, पर सज्जी बांह नूं एक झटका वज्या थोड़ा जिहा। एकदम घोड़े ने छाल जो मारी, सतगुरु फुरतीले आप भी बहुत ने, एकदम दे नाल अणजाण बंदा हुंदा तां घोड़ा उहनूं सुट दिंदा, पर सतगुरु सच्चे पातशाह तां आप मालक ने, सृष्टि दे अंतरजामी सतगुरु जाणदे ने की होण वाला है, इस करके सावधान रहे।
1: जडे बोर पीड़ा कुछ पए, सी तुरमाल संग बंद गए।
0: जदों दुबारा फिर घोड़े ते चढ़े, बांह विच कुछ पीड़ होई, झटका वज्या बांह नूं, फिर सेवक ने चिट्टे रंग दा

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत वाए कर भले फंदायो पुनजनी मंदर प्रब आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छालां भी मरवाईयां, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वो भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धि सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आके उतरे महिलां दे सामने माता जी

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी नूं जाके पैरी पैणा करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुर सपूत पर दृष्ट पसारे, अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: अपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तकिया,

0: महाराज ने कहते एक अजय सिंह तुम खड़े किए उसे दरवाजे से मूहरले पासे पहरे से वो सारा दान ए खो लिया है इन्नी कादी इच्छा जाग पई उन्होंने
1: आवन जानो बंद करते तिज आदक सर संग
0: तो इस कृपा कहते आना जाना ना सारे ना बंद करता आप ब्राह्मण ना लड़ पे कदे ओ ना लड़ पे कदे ओ ना लड़ पे ये कोई चंगी गल है या महाराज सच्चे पातशाह सुना रहे हैं
1: कहे सुने मैं किसके नाई उचित अनुचित लख न सकाई
0: अरे थोड़े सिंह बारे ही हुंदे जांदे ने ये तो किसी के कहे सुने च नहीं है ये तो ना योग अयोग जानते ने तो इस प्रकार के नाल हुण सिंह तो महाराज के सूल ते चलणगे जो सिंघां नूं हुक्म आसी तां ओह कम करना हुण माता जी कहिंदे मेरे अखे नहीं लगदे वो जिवें पिछे जे माता जी ने एक बारी अपनी मर्जी नाल ही कहता आखे लंगर एक टाइम कर दिओ मसंदा ने जाके डराता माता जी काल पै गया चारे पासे बई हुण तां बड़े लोग आ गए हुण तां अपना अन्न मुक जावेगा आपां वी भुखे मर जावांगे माता जी ने सतगुरु जी नूं कहण दी बजाए सीधा ही हुक्म करता भी लंगर एक टाइम कर दिओ जदों महाराज कोले खबर गई तां महाराज ने माता नूं पुछया माता जी ठीक असीं थोड़े साहिबजादे आ पुत्र हैं पालिया ठीक है पर गुरता गद्दी दे मालक आ हुक्म संगत उत्ते थोड़ा नहीं चल सकता तुसीं किहनूं पुछ के लंगर इउं कीता इह तां एक वो गल होगी कि बेसिदकियां वाली गल होगी महाराज ने कहा कि रोज तो तुसीं पढ़दे हो काहे रे मन चितवै उद्दम जाहर हर जीव परिया सैल पत्थर मैं जंतु पाए ता कर जगाग्या कर धरिया माता जी तुहाडा अपना स्थान है सत्कारयोग है पर तुसीं अपनी मर्जी नाल कोई बचन ना करिया करो फिर काफी महाराज ने वीर रस विच आके बचन भी करते मसां बख्शाए सी सो इस करके हुण भी माता जी नाराज ने कहिंदे ये थोड़े जिहड़े सिंघ ने ये अपनी ही मनमर्जियां करते हैं
1: श्री सतगुर ऊचे बोल मात के सुने श्री सतगुर श्री मुक्ते भने
0: जदों माता जी के उची उची बोल सुने तो उस वक्त सुभायमान मुख विचों गुरां ने इस तरह वचन कहा
1: मात कोप के सन अस कीना हुक्म तुमारो को ने चीना
0: सो उस वक्त माता जी कादा गुस्सा किया है तुहाडे हुक्म नूं जाणिया नहीं है किसने नहीं जाणिया इने तुहाडा हुक्म मन्या दसो मैनू
1: सुन सुत ते प्रसंग कह दयो तौ सिर सदका बिपरन लयो
0: सुन के अपने साहिबजादे भाव दसवें पातशाह तो माता जी ने सारी गल सुनाई तुहाडे सिर सदका मैं ब्राह्मण नूं दान दिता सी मैं सारिया चीजा ब्राह्मण नूं दित्तियां सन
1: ले जात सो सिंह न छीने उदम किन्ने
0: देखो किन्ना उपद्रव किया उन्होंने निसंग हो के आ सारिया चीजा उन्होंने खो लिया कि ब्राह्मण दे पासों
1: श्री सतगुर
2: चौपाई भीम चंद सैलेंद्र बिलंदा पनियो सुनो तुम सकल गिरंदा क्यों न भविखत बात विचारो सिर पर शत्रु प्रबल विचारो
3: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र हजूरी सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार प्रसंग के सरवण कर रहे हाँ सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह श्री आनंदपुर साहब विखे आ के सजे हैं संगतां नूं बहुत बख्शिशां कर रहे ने इस तरह बहुत सारिया मर्यादावां सिखाउणियां सिंघां नूं देखना कि सिंह किन्ने सुचेत होए ने अगे नालों ऐसिया साखियां सरवण कीतियां सोहनिया पहाड़ी राजां दा प्रसंग प्रारंभ होया है बहुत दुखी हो के भीम चंद ने सारे राजां नूं चिट्ठियां पा के बुला लिया है आपस विच विचार कर रहे ने कि महाराज दसवें पातशाह नाल जंग आपां नूं करना चाहिए मिलकर, बड़े प्रबल दुश्मन ने अपने, नहीं कल नूं अपना राज खो लैणगे, दबा लैणगे आपां नूं। सो इस तरह दीआं विचारां करन लई इकट्ठे होए ने, आओ सत्कार नाल इतिहास श्रवण करिए, रसना करिए, पवित्र गज के आखो।

0: युद्ध विच टेके लड़ो जाओ फिर हुण जंग विच जित प्राप्त होवेगी।
1: अतो रिपन दल को दलो पकड़ो शस्त्र क्रुद
0: जाओ जाके मैदाने जंग दे दुश्मन नु मारो ते अपने हत्था दे शस्त्र पकड़ लो वीर रस विच आ जाओ ते जंग करो। या गुरां ने हुण वचन करता हुण रक्षा भी करनगे। जे इन्ना कदा खिचण फिर आपां सीधे भी नहीं हुंदे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई गुरां ने जो वचन कहा है वह वचन जरूर कमाया करो। माड़ी मोटी ढिल दिखाउणी चंगी नहीं। इस तरह फिर आपां नूं घाटा पैंदा। जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु के वचना के उत्ते पहरा दिता है एक एक वचन नूं कमाया है उन्हां नूं सतगुरु महाराज निहाल कर दिता है। हां जे कोई अवग्या हो जाती तो माफी मंग लो। यही दस्या है माफिया मंग लिया करो। सवेरे दुपहरे शाम रात महाराज तो माफी मंगते रहो। महाराज मेर करो सातों को गलती हो जाती है सौ गल्लां हो जांदियां ने सातों पूरी रहत नहीं कमाई जाती। हां थोड़े सिख ही आ पर नहीं कई बार साढ़े को ढिलाइया हो जांदियां ने। और सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तो माफिया मंग लईए कि महाराज असं इन्ने योग नहीं हां सानू बख्श लो। इस तरह महाराज अगे हाथ जोड़ के बेनती करिए

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वरगे बचन सन वरसम, ए वर हो गया खालसे नूं, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, एदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण बचन हो गया।

0: पंक्तियां कह के चुप कर गए।
1: कहते लगी समाध पद लगी गुप्त रस गुप।
0: यों कहने समाधि ला ली, गुर चरणा विच समाधि लग गई ते लीन होके गुप्त रस लेता।
1: कल वरतारा पद सुने कलयुगता का दास।
0: जिहड़ा कलयुग दा वरतारा सुनेगा ये साखी नूं सुने कलयुग दा दास बन जाएगा।
1: पाप भगे भगती जगे धन सिख की आस।
0: कहने पाप ओहदे भज जाणगे, भगती ओहदे हिरदे जागेगी, तन गुरसिखां दी आस पूरी होवेगी, जिहड़े गुरसिख होणगे। सो ऐसा महाराज ने वचन सुना दिता है। ये ढंग दे नाल गुरां ने खालसे नूं सोहणा सुनाया इतिहास। आने वाला समा मुकदी गल मुकाईए भई अमर छको, दाड़ियां जिहड़े कर दाड़ियां अपनियां रख लो भाई। महाराज कहिंदे आपे ही शूद्र बन जांदे ने, आपे ही लोग तंबाकू जा पीण लग जांदे ने, आपे मलेश बन जांदे ने। ऐसा भयानक समा है कलयुग दा। इको ही बचन कीता कि अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ो, अमर छको, गुरु वाले बनो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मन्नो। यही सोहना उपदेश हुंदा। बाकी ये सारियां चीजां तां विस्तार नाल तां आउंदियां ने कथा विच। अमृत वेले भी ताइयों विस्तार हुंदा है कि हुण भी कि क्योंकि कलयुग के जीवां नूं शंके बहुते हुंदे ने। शंकियां दी निवृत्ति वास्ते इन्ना कुछ दसना पैंदा, नहीं तां सारे नालों सौखा काम महाराज इक कह देण भी उह वाहिगुरू वाहिगुरू करिया कर भाई। हुण जे बाबा दीप सिंह जी वर्गे हुण उहदा कहण सत बचन जी, उह वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग जाणगे भई किहने कहा, महाराज जी ने कहा। ये साडे वर्गे हुंदे क्यों कहीए, ये कहण दा की फायदा, फिर की बनेगा, गात्रा पा के की बनेगा, अहीं 50 प्रश्न करने अग्गों। इसे करके विस्थार करना पैंदा। तो महाराज कहने जे वैसे ही एक गल मान लो, सारिया गल छड़ दो पर नहीं मानते, फिर भी कहें आह गल क्यों, आ किवें इहदा की लाभ है। पर सतगुरु कहते जे सारे जने एक ही बचन मान लो उस विच ही भला है। महाराज वो केड़ा बचन

0: आप जी ने यह कल युग के समय के वीर योधा खालसा प्रगट किया है जो सारे नालों उत्तम है श्रोमणी है
1: सर्ब श्रोमण खालसा रचियो पंथ सुखदाए।
0: यह सारे नालों श्रोमणी खालसा पंथ जो हर प्रकार के नाल समर्थ है जो सुख दे देण वाला सुख नूं भोगण वाला दूसरियां नूं सुख देण वाला पर उपकारी पंथ रचिया है।
1: बिनेक गंदे धूम ते जग में अदक सुहाए।
0: एक कौम है एक एक खालसा पंथ है जेड़ा एक जो गंदा धूआं है तंबाकू उहदे तों रहत हो के जगत दे विच सोभ नीक हुंदा है। बाकी लोग कोई भी है भावे गंदा धूआं सारी दुनिया पींदी है।
1: पूछे परम सुप्रेम कर रहनी को बिरतंत।
0: हुण रहनी पुछदे ने सारे जाने कि परम प्रेम दे नाल पुछदे ने कि जिहड़ी खालसे दी रहनी बहनी है यह कैसी होनी चाहीदी है।
1: किसको देवे किमर है कैसे वरतै संत।
0: ए संत स्वरूप खालसा संत सिपाही खालसा ए हुण साडा है कि ग्रिस्तियां दा अगे तां किसे नूं होर दान दिंदे सी पर आप जी ने कहा दान दियो इन्हीं को भलो और नाले हुण होर नां नूं दान बंद कर दिता आपने। हुण इह भी दसो कि दान किहनूं दईए किवें रहीए वरतारे विच रहत मर्यादा अपनी रहनी बहनी विच किवें रहीए ते इहदे नाल नाल कैसे वरतों संत किस तरीके नाल वरतना करिए संत खालसा नाल।
1: गुरु कै सुन खालसा।

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै लई केस भी रख ले दाड़ा भी रख लिया उन्हें चरण पहलिया है फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल भी ये सिख है।
1: मेरो सिख अन सब त्याग पिठी ब्राह्मण दान न लागै
0: होर जेड़े मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो जेड़े हुण आपां नूं मानदे ही नहीं गे गुरु घर नूं नहीं मानदे एवें उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु करदा है श्रद्धालु है प्रेमी है किरत होर नहीं करदे कई ब्राह्मण गुरु घर दे प्रेमी बन गए गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए चरण पावलिए बन गए। सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है वह तां इक गुरसिख है भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जावे खंडे बाटे दा अमर छक लवे गुर भाई है साडा उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना महाराज कहिंदे हुण नहीं हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ

गुरु साहब की ही पूजा करनी है सारे कामों के विच सहज पाठ श्री अखंड पाठ साहब गुरु ग्रंथ साहब नूं मनना ये गुरु घर के कार्ज आप करने ने पहला महाराज नूं मनाउणा तरीके नाल विधि नाल विधि तो भाव के जिवें आप पाठ करते हैं पाठ करने वाले भी आए छेती नाल भी प्रकाश है आए बाहरों पता नहीं कित्थों आए ने आ किताबें बह गए हम भी पाठ करके आए गुरुद्वारे वो विधियां तो थोनों सीखनी चाहिए सारियां नूं ते इस प्रकार नाल महाराज जी तो रोकते ने कई चीजा तो कि ए जेडे कर्म ने आ करने नहीं इस तरह केसी इशनान का बहुत ने पता केसी इशनान चौथे दिन तो महाराज का हुक्म ही है एतवार बुधवार रख लो दो दिन रख लो मैं करना केसी इशनान करना जा कोई हफ्ते विच ए दिन रखो तो साढ़े जेडे केसी इशनान ही दस दस दिन नहीं करते है तो उदा फिर विषय विकार प्रवृत्त हो जाना वह कई चीजा देखने वाली होंदिया ने इं जड़िया अपने वलों ही कमिया होंदिया ने पाठ करने आपां नूं फल की प्राप्ति नहीं होंगी पवित्रता का बहुत ख्याल रख्या करो जिहड़ी पवित्रता है आ सरोवर दे विच जाके विच ही पैर पा के खड़ जाण उत्थों ही जल छकी जांदे इहदा की फायदा होया सानूं फिर सरोवर साहिब दे बाहरली पौड़ी ते पैरां दे उत्ते फिर पहलां पैरां ते पाणी पाउणगे फिर अक्खां ते छिट्टे मारनगे उह सारा कुछ सरोवर च सिटी जांदे हो चूड़ा उत्थों सिर्फ मर्यादा इन्नी आ भी चूड़ा भर के बाहर आके ना जिधर नूं परकर्मा है उधर नूं मुख करके फिर चूड़ा छको तो पहला जाके तुसीं सारा कुछ घाला माला ही कर छड़दे हो इन्हां गल्लां दा ध्यान रखो मर्यादा विच जे कायम रहोगे पहला भी महाराज ने दस्सिया सी मर्यादा दियां लीहां ते जद तक रेलगड्डी चलदी है उदों तक उह ठीक रहिंदी आ जदों ट्रेन माड़ी जी इधर उधर होगी सारी उल्ट जाती है इस करके मर्यादा की लीह

0: सुपते निसमय सतगुर मन पावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साहिब संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज चल रही लड़ी व्यार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जांदे तां वी कोई डर नहीं सी पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तां है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें काल खुंदी आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लै के आवे वो शुद्ध रूप विच सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कविया गुणिया ज्ञानिया पंडतों नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कविया की जनरल नॉलेज देखते ने किन्नी क है किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे चाहे वह प्रश्न साढ़े नाल संबंध रखते ने जा नहीं रखते। कविया के ज्ञान परखना उन्होंने जवाब देने ने उन्होंने जोड़े उत्तर ने उन्होंने सुन के उत्तर फिर सतगुरु दसणगे। नहीं असल में यह गल इस तरह नहीं है यह गल इस तरह है क्यों कविया के जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करे प्यार सत्कार। आओ श्रवण करते हाँ प्यार सत्कार दर्शनों करिए पवित्र गल के

0: अपने लिखारी साहिब सिंह नूं भाई गुरबख्श सिंह राम कुवार कहण लगे, सुन साहब सिया, फिर मेरे मालक गुरु गोबिंद सिंह हस पे, इं फिर इं हाथ जोड़ के मैं बेनती की,
1: सब को उत्तर आप ही कहिए संगत तोर।
0: महाराज तुहाडी संगत है, तुहाडे बच्चे है, ये जिन्ने भी तुसी प्रश्न करके सानू उत्तर पुछे ने, अपनी अपनी बुद्धि मुताबक हरेक ने जवाब दिता है। हुण असी नहीं जानते कि जवाब ठीक है जां गलत है, तुसी पुछया, तुसी भी कृपा करो अपनी संगत नूं इहदे सारे जवाब दे दिओ जी।
1: बोले प्रभ तब दयाल होए, जन्म जोन परम जीव।
0: तां कलगियां वाले पातशाह प्रसन्न होके दयालु होके इउं बोले, कहिंदे सुणो भाई, ठीक है कवियां ने आपो अपनी बुद्धि लड़ा के अपनी बुद्धि मुताबक गल कीती है, हुण असी दसदे आं जिहड़ा सुपना हुंदा ना बंदे नूं आउंदा, हुण सुणो सही जवाब कि जन्म जोन भ्रम जीव। यह जिहड़ा जीव है ना, कई जन्मां तों लै के जूनियां विच भरमदा भटकदा फिरदा है।
1: निंद्रा लासे कांत चित लखै भरमै सुपनीव।
0: जदों यह निंद्रा दे वस विच पैंदा जीव, उदों जीव जिहड़ा है यह चित दियां, जदों बिल्कुल एकांत हो जांदा ना सौं के, उदों चित दे विच जिहड़े पुराने संस्कार दबे पए ने जीव दे, वो निकले आउंदे ने। अगले पिछले जन्मां दीआं गल्लां बातां होण करके पिछले जन्मां दे हिसाब किताब भी जीव दे सामने आ जांदे हन।
1: तारा गुर पत्नी भुगे चंद का लखा देख।
0: यह तां तुहानूं दस्सिया है सुपना, भी सुपना बंदे नूं तां आउंदा कि पिछलियां जन्मां दा हिसाब किताब जदों एकांत विच बहिंदे आ। कई वार आपां आप भगती करन बहने हैं, नितनेम करन बहने हैं, सिमन करन बहने हैं, तो अपना प्रश्न यही हुंदा जदों अगे पिछे कोई गल याद नहीं आउंदी, जदों पाठ करदे हां बड़ियां गल्लां याद आउंदियां ने, क्यों? क्योंकि आपां उदों एकांत बैठ जांदे हैं। इसे तरह ही बंदा जदों सौंदा है, सौ के उहदा चित्त एकांत हुंदा है, एकांत चित्त विच कई वारी पिछलियां जन्मां दीआं गल्लां सामने आउंदियां ने, कई वारी आउण वाले जन्मां दीआं गल्लां सामने आउंदियां ने, तां सुपना बन जांदा है। एक सारिआं नालों सूखम जिहड़ी नाड़ी है ना, बरीक वाल नालों भी सौ गुणा बरीक नाड़ी है। जदों आपां सुखोपत अवस्था विच रोटी खा के चंगी रात नूं सौंदे हैं, तो यह प्रीत नाड़ी है, एक सौ गुणा वध बरीक है वाल नालों भी, उत्थे मन सौंदा है। उस सुखोपत अवस्था विच तीन घंटे, दो घंटे जां चार घंटे उत्थे जा के मन जदों सौंदा, जदों फिर जागृत अवस्था विच आउंदा, आपां तां सुते रहने हैं, यह उदों फिर सुपने बनाउणे शुरू करदा, फिर मन नूं पिछलियां अगलियां सब याद आ जांदियां ने। इस करके महाराज कहिंदे बणदा सुपना। यह तां सी सुपने दा जवाब। हुण अगला जवाब जिहड़ा वो चंद्रमा नूं मैं पुछिया सी वी कालख क्यों लगी हुई है, महाराज कहिंदे वो तां तेरी गल ठीक है, किसने धोखा कीता सीगा, पर एक गल चंद्रमा दी मैं तुहानूं दस दिआं सारिआं नूं वी इहनूं कालख क्यों लगी हुई है। एक बारी बृहस्पति जिहड़ा सी ना देवतियां दा गुरु, ये वीरवार जिहनूं कहिंदे बृहस्पति, ये किते कम गया सी, इहदी इस्तरी सी तारा, चंद्रमा नूं उहदी राखी वास्ते घर छड्ड गया वी मैं जाणा किते कम, तूं घर दी सांभ संभाल करी। तो मगरों इन्हां दे मन मैले हो गए, इन्हां ने कुकर्म करता दोवां ने, जिहदे तों बुद्ध नामे फिर इन्हां दा पुत्तर पैदा होया जिहनूं बुद्ध कहिंदे ने। महाराज कहिंदे इस करके गुरु की इस पत्नी नाल माड़ा कर्म करने करके चंद्रमा इन्ना वड्डा कलंकी हो गया कि चंद्रमा के घर जदों कृष्ण जी आए, भाव चंद्रमा दे विच सूरज बंसी ने एक चंद्रमा बंसी ने, जदों चंद्रमा बंसी विच कृष्ण जी ने जन्म लिया, तां जाके चंद्रमा ने कहा महाराज हुण तां तुसीं मेरी कोल विच आए हो, मेरे कालख मेट दिओ। कृष्ण जी ने कहा ना, यह नहीं हो सकता कि तेरी मैं कोल विच आ गया तेरी कालख मेट दिया, तू तो इन्ना वड्डा गुनाह कर लिया है भी जिहड़ा गुनाह कदे मिटी नहीं सकता। इस करके महाराज कहिंदे भाई जिहड़ा पराया घर तकना है, पराए माड़े कर्म करने ने, देख पराईयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाणा उह तां ठीक है, पर जिहड़े माड़े कर्म करने ने उहनां दा इन्ना वड्डा कलंक है कि चाहे फिर जिथे मर्जी जोर ला लिओ, ਉਹ ਕਲੰਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੇ ਲਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।
1: ਪਰ ਨਾਰੀ ਪਰਸਨ ਅਗੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਇਓ ਲੇਖ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਨਾਰੀ ਪਰਸਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਾਪ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾਗ ਲਵਾਇਆ, ਕੌਤਕ ਐਸਾ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਨਾ ਮਰਵਾ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੇ ਪਰਨਾ ਵੱਜਿਆ ਜਦ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਖ ਸਾਰੀ ਮੜੀ ਗਈ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਕਾਲਖ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1: ਰਾਮ ਲਖਨ ਮ੍ਰਿਗਿਆ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਤ।
0: ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੋਡੇ ਤੇ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਰਨਵੀ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗਾ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਮ ਤੇ ਲਛਮਣ ਜੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਿਰਗ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ ਲਏ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਏ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ, ਵਿਛੜ ਕੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਲਛਮਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਆਈਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਜਾਂ ਲਛਮਣ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਦਸਤਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ

0: चेला होगा कोई वह अपने गुरु को समझाया करेगा जाके नहीं गुरु देव यह गल इस तरह तुम हले बच्चे हो थोनू नहीं हले इन्हों गलों का पता भाव हूं भी तो समझाते ही नहीं आके हूं भी तो कह रहे गुरु ग्रंथ साहब जा पिशौर सिंह प्यारा सिंह अर्गे उठ खड़े हुए थे हूं होर ही खड़े दसम ग्रंथ के विरुद्ध होर गल्ला कर रहे ने यही जी तो गल है ये कह रहे इन्हों नहीं पता है असल तो सानू पता साडिया बुद्धियां ज्यादा कम कर दिया ने सारी मर्यादा ही पुठी करती इस करके कहने कलयुग दे विच ऐसे कर्म होणगे ते अन्न पावन खाए ते अपवित्रता वाला अन्न खाया करनगे कहने इहदे खाण नाल तां दिमाग चलदा जे ना पीए गाली नहीं चलदा है कई तां इहो कहंदे ने वी गल मैं कहा तुसीं इह शराब पीने हो कोई बंदे सी आवें शराब पीने कहिंदा आवाज नहीं निकलदी इह तां गल साफ करन वाली चीज है
1: नहन तजै काया दुखी ਆਵੇਂ ਬੋਰ ਚ ਪਾਏ
0: ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹਾਉਣ ਤਜੈ ਕਾਇਆ ਦੁਖੀ ਜੇ ਨਹਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਕੀ ਨਹਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਆਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਟੀ

0: महाराज कहते रोटियां खाण नूं तकड़े होणगे कल युग च, चीजां खाई जाणगे सारियां, जे कह दो इशनान कर लो फिर उत्थे डिग पिया करनगे, मेरा तां शरीर नहीं ठीक है।
1: प्रीत थोर खुश मत बचन उधर भरन के काज।
0: कहिंदे प्रीति तां होवेगी नहीं लोकां दे विच, होर की करनगे। कहिंदे पेट भरन लई ना खुशामद करिया करनगे, इहदे कोल सानूं खाण नूं मिलदा है, जिथों खाण नूं मिलेगा उत्थे पैरी हथ तक लाया करनगे, गोडी हथ लाउणगे, यह बंदा बड़ा वधिया। जिथों खाण नूं ना मिलिया करेगा उहनूं गालां कढ़िया करनगे।
1: नारी मिलना भोग कब ग्रह ग्रह जजिए साज।
0: बस इको ही गल मन दे विच होवेगी लोकां दे मनां अंदर कलयुग दे विच, विशियां दी गल। जे तां विशियां दी गल करो फिर तां जिथे गाउण वाले आउंदे ने आ गाने गाउण वाले, गाने गाउण वालियां इस्त्रियां, उथे दा बेअंत कट्ठ हुंदा। जिथे कोई भजन पाठ की गल होगी उथों लोग भजया करनगे। जां इक होर कहिंदे ने जिवें सारा दिन बंदा बस विशियां नूं ही चित वी जाया करे कलयुग दे विच, वी कदों रात पवे कदों विशियां च परिवर्त होईए। कहिंदे जिहड़े लोग कवि लोग होणगे उहनां दी जिहड़ी चंगी कविता होगी कलयुग दे विच, लोग चंगी कविता नूं सुणिया नहीं करनगे, कहणगे ऐवें फालतू गल्लां करदा। जे उही कवि किसी इस्त्री की कविता सुना देवे विशियां बकारां दी, भाव माड़े गाने जिवें अजकल चलते ने फलाना गा रहा फलाना गा रहा, उत्थे लोग सुन जाया करनगे माड़े गाने। ते जिथे कोई कविशरी हुंदी है गुरु घर की गल हुंदी है, जिथे कोई ढाडी सिंह आउंदे ने इह कहिंदे एवें जकड़ियां मारदे फालतू, इह झूठियां गल्लां करदे आ, इह उहनां नूं नहीं सुणनगे लोग। कि महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे फलाने थां फलाना गा रहा फलाने थां फलाना गा रहा, इहनूं दो वी 50 लख रुपया, करोड़ रुपया एक रात दे गाउण दा, करोड़ रुपया लैंदे लोग। जे कोई लोग बाणी पढ़न वाला होवेगा, कोई कथा वाला, कोई कीर्तन वाला, भाई जी 151 बढ़िया उहनूं 151 251 उत्थे नाल 1 रुपया जरूर लैणा, ते उह जिहड़े थोड़े गाउण वाले उहनूं क्यों नहीं कहिंदे 5 लख 1 रुपया लैणा, उहनूं नहीं कहिंदे 1 रुपये नाल, क्योंकि उहदा निरादर हुंदा। इस करके जिहड़े गाने गाउण वाले होणगे उहनां नूं लोग सत्कार दिया करनगे, कहिंदा मेरे समें च जिहड़े लोग चंगे होणगे उहनां नूं लोग निंदिया करनगे। इस करके कलयुग अपनी रीति दस रहा महाराज नूं कि मेरे समें च की वर्तारा वरतेगा, आओ रसना नूं करिए पवित्र।

0: लोग जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंदबुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच पैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हैं, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। ये बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं, उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घरां च ऐ चलदा करदा कोई, सो इस करके उत्थे जाके जदों ये कहीदा बई जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लैंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे, क्योंकि दुश्मन का टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकते ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर यह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कटण वास्ते दसम की बाणी है। ताइयों महाराज ने दसम ग्रंथ की बाणी जिन्हें भी जाप साहब के पाठ हो जाण, चौबी साहब के वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तो महाराज ने यह चौबी साहब के पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारी है। जिहड़े लोग किंतु करते हैं चौबी साहब से, समा आ जाएगा जब तुसी खुद ही कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो, क्योंकि इहदी जरूरत पै जानी है। जाप साहब की बाणी फिर इसे प्रकार आईयों सतगुरु महाराज ने आपां गुरबाणी बख्शिश की, जपजी साहब जाप साहब सवैये चौबी साहब आनंद साहब का पाठ। सो इहदे विच भी बहुत विचार वालियां चीजां ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब 84 लाख जून के मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकते ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है, जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे आ, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे आ। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्शी।

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विच चा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो।

कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी नदाना तुमरी महिमा वर्णन सको।

एक मिनट लिए शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण होआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

आओ जुड़िए सतगुरु दे चरणा नाल। मेरा साहब कृपा करे ए जिहड़ियां घड़ियां आपां नूं नसीब होईयां ने झिम झिम अमृत वरसदा। एक थां ते मेरे सतगुरु पातशाह जी कहिंदे ने ऐसा वरिया ऐसा वरिया ऊनम ऊनम आया। बोलो ऊनम ऊनम। ऊनम दा मतलब हुंदा है नीवा नीवा। जदों बदल सावण दे भादरों दे महीने विच झड़ियां लगदियां ने ते गुरमुख प्यारे बदल ए लगता जी कोठियां दे नाल लग गया। आखो सतनाम श्री। इतना हुण आपां नूं नाम जपदियां नूं लगदा सी कि गुरु साडे कोल आ गया। ऊनम ऊनम आया। बोलो ऊनम ऊनम। नीवा नीवा बदल बन के गुरु कोल आ गया ते वरसे लाए झड़ी। वरसे लाए झड़ी लगी। वेखी ना कई बार सत सत दिन अठ अठ दिन नौ नौ दिन फिर बदल हटन दा नाम ही नहीं लैंदा। पंद्रह पंद्रह दिन पानिया वटा बन्ने तोड़ के लै जांदा है झड़ियां ला के वरस पैंदा है। इसे तरह मेरा सतगुरु मिलकर कृपा करे ए जेहड़े तेरह चौदह दिन अपने बाकी ने झड़ी ला के सतगुरु वर जावे। वाह।

तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं मूर्ख किश दीजे। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा,

0: से मैं हूं करूं निवास, मेरा सदगुरु अपना स्वरूप बख्श के आखूगा कि खालसा मेरा पुत है, खालसा मेरा रूप है, मगर कदों जदों साडे विच ओह जे गुण आउणगे। आओ मेरा सदगुरु कृपा करे, समा बहुत हो गया, एक मन एक चित होके रीढ़ की हड्डी सिद्धी कर लो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह नूं नीले बाणी विच वेखो ते मेरे साहबे आलम पातशाह नूं करोड़ा सूरजां दा प्रकाश ओहदे चेहरे तों पैंदिआं वेख के ओहदे चरणां नाल जुड़ के उस रब्बी आनंदमई मूर्त दे चरणां विच जुड़ के जरा जपो वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु
1: आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। आओ हुण मेरे गरीब नवाज बापू दे चरणां नाल जुड़ जाओ। ए जिहड़े शराटे आउंदे तुसीं वेख्या कदी, जदों वर्खा आउंदी बहुत सारे सौण भादरों दे विच बदल जदों घुल जांदे ने, इधरों शराटा मार के ऐ नूं लंघ गया, इधरों शराटा मार के ऐ नूं लंघ गया। इतना मेरा सतगुरु कृपा करे, जो संगत इतना जुड़ के बहिंदी है ते इनू मेरे सतगुरु ने कहा वा मोर पपीए बोल दे, बोलो मोर पपीए, फिर इतना गज के आखो मोर पपीए कदों वेख बदल काले, वेख बदल मोर ते पपीए खुशी च आए जदों बोलदे ने प्रियो प्रियो प्रियो करदे ने काले बदल वेख के। आ हुण संगत जुड़ी है ना जेड़ी, ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह बदल बन के सामने आया बैठा है, ते साडियां रूहां मोर ते पपीए बन के बोलन वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनू कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करू आ प्यार नाल आण के दोवे बावां पहाड़ पहाड़ जिहड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरो तां आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते औगण वाली नूं ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने औगण यारी कंत न पावे बोलो औगण यारी सारे बोलो जरा औगण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी औगण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा उहदा सुभा नू इहने जाणिया ही नहीं कि मेरा पति ते उहना नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणां दीआं मालक ने ते आपां इस करके गुरमुख प्यारिओ मेरे सतगुरु दे चरणां विच बेनती करनी आ कि आपां नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यारा वां मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मिलाप हो जाए वोहे

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खिंच के आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज दा पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वडियाई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया ए

हाथ जोड़ो सतगुरु दे चरणा च तरला पाओ, सतगुरु ए जलदे बलदे संसार चो अपना ओट आसरा दे के बचाला। आओ हुण लड़ीवार जो कथा आरंभिया, सतगुरु दी पावन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे मुबारक बचन आप जी सरवण करने। पहलो आप जी नूं पुछ लवां घरां दे विच की बोलना है जी, सारे दस्यो की बोलना है। किते इस तरह ना होवे कि जिस तरह तोतियां दी डार नूं किसे ने एक तोता किसे रख लिया ते उन्हूं महारनी पका ली भी तोतिया पोस्त नहीं खाना, ध्यान दिओ तोतिया पोस्त नहीं खाना। एक दिन वह तोतियां दी डार विच उड के रल गया, सारिया नूं महारनी पकाती तोतिया पोस्त नहीं खाना, ते सारे ही तोते उडदे उडदे जाके एक पोस्त दे खेत विच बह गए, ते सारिया ने चुंझां भरियां पोस्त खाई जांदे ने, ते जेदी चुंझ खाली होई जांदी उह आखी जांदा वा तोतिया पोस्त ना खाई मर्जी दा है, नाले खाई जांदे ने गुरमुखो, नाले अंग्रेजी ना किते न्याणे ना बोली जायो ते नाले आखी जायो पंजाबी बोलनी, इस तरह का नहीं। बार भुलो जिथे तुहाडा नहीं सरदा, मगर अपनी औलाद दे कन्नां विच इह छैत वर्गी मिठी गुरमुखी पाओ, घर विच पंजाबी बोलो, पंजाबी लिखणी बच्चां नूं सिखाओ, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी नाल जोड़ो। आओ हुण बाबा फरीद जी दी रसना तो मुबारक भजन सरवण करिए जी।